जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम स्मर तो जीवे फिर ना खाई मां दाल कोट जन्म भरम

अवतारा दे विच अते गुरु नानक दे विच सिर्फ फर्क इतना कि उन्होंने तो अपना नाम जपाया, पर गुरु नानक ने निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों

उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगो जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे, उसे वेले जां गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकिया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवान आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, कर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे कर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी

अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उना नू तृप्त कीता। ते वड्डे होए

नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए, भाई साहिब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं उपदेश

पैसा पाई गुरुदास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की हुई बैठा।

रामदास जिन्हां नूं सतगुरु जानिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हां ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नूं अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समय विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नूं जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा कि जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे।

गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। भाई जेड़ा आप जुड़िया होवे परमात्मा नाल, ते फिर दूसरे नू परमात्मा दे शब्द नाल जोड़ देवे। पाई साहब कहंदे हन, मानो उसनू सत सोने दे मंदर बन

इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

आखड़ा अमृत जांका नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फला वाला आंदे जांदे राही ते उहदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जिहड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त दा नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अप

मेरे नानक दी वरे गंढ है कि मेरा नानक आवेगा या हर साल दी तरह ए जन्म दिन भी उड़ीकां विच लंघ जाएगा। बुढ़ा बाबा कालू अखां विच अथरू भर के कहन लगे, तृप्ता इन्ना लाडला पुत्र है मेरा नानक, ओनू दुनिया दा फिकर है, दुनिया दे उधार वास्ते कारोबार दे सुख छड के दुनिया नू सुख देण वास्ते तुरे है, पर साडियां अखां ओनू देखण वास्ते तरसदियां ने। हर साल इस दिन दी उडीक करदे हां कि मेरा नानक आवेगा, पर हर साल ए जन्म दिन दा दिन लंघ जांदा है। अथरू किरदे हां उडीकदे हां। माता तृप्ता जी कहन लगे, पर इस वारी इस तरह महसूस हुंदा है कि जिवें मेरा नानक जरूर आवेगा, इस वारी अपने नानक दा जन्मदिन, अपने पुत्र दा जन्मदिन इस घर विच मनाया जाएगा। कहिंदिया कहिंदिया माता तृप्ता जी दियां अखां विच वी अथरू आ गए। सवेर बीती, दोपहर हो गई। मेहता कालू जी वेड़े विच बैठे, अखां बाहर दरवाजे वाल ने। इन्ने नूं मेहता कालू जी आवाज मारदे ने, गुरु नानक साहिब जी दे माता अपनी धर्मसपत्नी, तृप्ता आओ देख मेरी लाडली थी, मेरे नानक दी वड्डी भैण नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचानिया सी, नानकी नहीं सानू कहा सी कि ए अर्शां तू आया है, इसनू पुत्र ना समझो, ए आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है,

मेहता कालू जी उठ खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुक।

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनु गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुन ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जयराव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जयराम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। पाईया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जयराम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जयराम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोई दी तलवंडी दा राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकदे पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मार दे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखदे ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते घुमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बावा फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ये नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिदे हिरदे विच प्यार नहीं जिदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसे गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

बंदगीकार सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। ए कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। ओ पति भी ने, पुत्र भी ने, ओ भरा भी ने, ओ सज्जन मित्र भी ने, ओ गुरु भी ने, ओ पीर भी ने, ओना ने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के अस भी अपने मना विच प्यार रखिए। साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

नाम तो किस तरह कुर्बान होईद है, पर तेरा ही शब्द पढ़ के अपने मन की भावना पे प्रगट करने हैं कि असी भी तेरे तो वारी जाने हैं, तेरे तो कुर्बान जाने हैं, तेरे नाम तो कुर्बान जाने हैं, क्योंकि तेरे नाम दे विच

देहन फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उना जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन दे पातशाह दा उचारण कीता होया जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम रिधे नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा, हर का नाम रिधे नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा। हर का नाम रिधे नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपन गे, हे प्रभु कृपा करी उना सारियां नु ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम रिदे नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह क्यों दिन फिर उना दे अंग संग होंदा है। गुरु गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। जो सिमरन गे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आख्या सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जांदा। हर हर जन दो एक है, बिप विचार किच नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नू ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी नू मंदा है ते की कहंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच एही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करां। और जो परमात्मा दी भक्ति करदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बादशाह जहांगीर दा दीवान हां, पहले तां गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा। संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है, तले ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे कि अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नु नमस्कार करके ते तती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नू सदिया, जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फरक दे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साई मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए। ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से। अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु, आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नीव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनूं हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है, शक्ति होंदिया होया
ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ।

या बाबा जी रुक गए। महाराज वाल निम्रता नेत्र चुका हके वेखे कह लगे हुक्म पातशाह साहब कह लगे रोगी आए पेट पानी नाल भरिया है वेखो ये ठीक हो सकता है। बाबा जी दे सिर ते टोकरा सी वगा के पेट दे उत्ते मारे ओ भाई कार सेवा दा भरिया होया कारे दा भरिया होया भारा टोकरा मजबूत हथा नाल चुकिया होया भरिया टोकरा ओदे पेट ते चुके मारे सारा पेट दा पानी एकदम बाहर आ उन्हें कोई इलाज तो नहीं पर बाबे बुढ़े कोले इलाज है ब्रह्म ज्ञानी को ऐसा भी इलाज है। ये कोई इलाज नहीं जलोदर दा कि उदा पेट दबा के पानी कटता जावे होर भर जाएगा और इस तरह दबा के कटन नाल कई होर कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है लेकिन बाबा बुढ़ा करे तो ठीक रहिंदा है क्योंकि गुरु के हुक्म विच कर रहे एक आप ब्रह्म ज्ञानी सेवादार है एक गुरु की रजा विच पेट का सारा पानी निकल गया बंदा उठ के बह गया चरणा ते पै गया महाराज कह लगा महाराज तुहाडी बड़ी कृपा उठण जोगा करता जे हुण इन्नी कृपा करो आ बैठा खलोण जोगा भी कर दे जीवन जोगा भी कर दे। तां गुरु अर्जन साहब कहन लगे सुन गुरमुखा जे आ ही गया है ना ते तैनूं हुण अधूरा नहीं भेजांगे ऊना नहीं भेजांगे जे आ ही गया इत्थे ते इत्थों तैनूं राह दे के तोरां हथ बन के खड़ा हो गया कहन लगा पातशाह करो कृपा साहब कहन लगे देख ए जीवन तां मिल गया तैनूं इस रोग तो तू बच गया लेकिन उधरले पासे तू सरकारी अहलकार है जाके तू फिर अपने नौकरी संभाल लवेगा माया विच रुझ जावेगा हुक्मां च लग जावेगा वेखी कि अंदर की बीमारी उथे दी उथे खड़ी रवे होमे दी ते होर लालच दी ते कई तरह दी बीमारियां ओ किते उथियां खड़ियां रहन कह लगा महाराज करो कृपा सारे पासों स्वस्थ करके भेजो सारियां तंदुरुस्तियां बख्शिश करो। साहब कह लगे जे सारे पासों तंदुरुस्त होना है शरीर करके भी तंदुरुस्त रहना है संसार दे सारे सुख भोगने ने ता वजीर खां इस तरह कर सुखमणि दे लड़ लग जा सुखमणि पढ़िया सुनिया कर पढ़ सके ते ठीक है नहीं तां सुनिया कर। ए वजीर खां सधारण बंदा नहीं सी अगे चल के आपां इतिहास च पढ़ने आ जहांगीर दे समय विच ही इह वजीरे आला बन गया सब तो वड्डा वजीर बन गया शाहजहां दे समय ते भी वड्डे वजीर दी थां ते रहा लेकिन एक कमाल दी गल रही है के बादशाह दियां गुरु घर नाल दोख भरियां कारवाइयां चलदियां रहियां लेकिन यह बंदा जेड़ा है गुरु का सत्कार इन्हें नहीं छड़िया। जिस दिन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं लाहौरों सदा आया सी यही वजीर खां इहदिया तोरिया गया जिसले जहांगीर के दरबार वालों हुक्म होया कि जाओ उन्होंने लैके आओ तो वह आके इत्थे सानू जवाब देन जो कर रहे ने ठीक है। वजीर खां नूं हुक्म कीता कि तू जा तू वेख्या है अमृतसर अगे तू उन्होंने कोल अगे गया है जा दरबार का हुक्म उन्हें सुना दे ते एदीए तुरदे पता है किवें सन एदी दा मतलब हुंदा सी सरकारी अहलकार डिग्निटरी अदब सत्कार लैण दे हकदार बंदे जिहड़े दरबारी सलाम लैण दा हक रखदे सन उन्हां नूं एदीए कहा जांदा सी ते इह आम तौर ते या तां घोड़ियां ते चलदे सन चार पंज बंदे नाल होण या मंजे ते बैठ जांदे सन चार बंदे चुक अगले पिंड छड्ड आउण ओ अगले उस पिंड दे बंदे उदों अगले पिंड छड्ड आउण लेकिन इस बंदे ने लाहौरों निकलदिया सार घोड़ा भी छड्डता मंजा भी छड्ड दिता कहण लगा नहीं गुरु के दर ते जाणा पैदल तुर के जावांगा अमृतसर साहब तक पैदल तुर के आया आके मथा टेक के साहबां दे चरणा च खड़ा है। साहब कहंदे ने आ वजीर खां जी आया कहण लगा महाराज अज मैं ठीक नहीं आया। साहब कहण लगे क्यों गलत की हो गया तू तां बहुत ठीक है अगे नाल क्योंकि ये अपने घर च एक गुरु के सिख पासो जिन्हों गुरमुखी अखर आउंदे सन। मैं एक गल जरूर कहां सिख होवे ते गुरमुखी अखर ना हो ना ते बड़ा कच्चा कच्चा जिहा अधूरा अधूरा जिहा जा जतन करना चाहिए गुरबाणी नूं सही रूप च पढ़ना है जिस तरह गुरु नानक ने उचारे ओवें पढ़ना है ते गुरमुखी अखरां दी पछाण जरूर चाहिए। हौली हौली तां इहदा सारा टब्बर सुखमणी दा स्रोता बन के गुरबाणी गुरबाणी दा जानकार हो गया वजीर खां सहत परिवार दे सुखमणी दे पाठक हो गए लेकिन पहला पहला किसे सिख कोलों बाणी सुनदा सी और इतिहास बकायदा जिक्र है कि सुखमणी दे भोग उपरंत बकायदा देग करके प्रसाद करके कड़ाह प्रसाद करके रोजाना उहदा भोग पा के अरदास करदे सन। ओ इस बीमार मरदे बंदे तों लै के वजीरे आला तक दीआं वडियाईआं जीवन भर सुखी गुरु नानक दे दर नाल भी बणी बादशाह दे दरबार विच भी वड्डियां वडियाईआं संसार दे कोलों भी सलामां सारे सुख लै के जीविआ। धन गुरु अर्जन साहब कहण लगे वजीर खां तेरा जीवन तो बड़ा सुधर गया तू तेनू कहदी तकलीफ है कहण लगा महाराज बड़ा गलत हुक्म लैके आया
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮਾਲਕ ਭਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੁਖਮਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀਆ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਨ, ਜਿਣ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੰਗ ਚ ਰਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਇਹ ਬਿਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾਮ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਉੱਛਲ ਪਿਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ, ਆਪ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ।

सच्चा निशान सच्चे तुद आखें ला करोड़ सच्चा है सब दान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तिहाइन सच।

चोरा जारा तय कूड़ियारा सारा पावे कार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

काल खाए छत होंदे, काल खाए छत होंदे, नानक पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, मां होंदे होए नी मां, हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, तान होंदे होए नी तान, हां तिसू विचों मारिया, छठ सियाणप होए आणा, हां तिसू

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहा जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच के बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार कर

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिस दा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिस दा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिस दा हर स्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे, ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

0: हमारे
1: श्रवण करिए।
2: गुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी द्वारा अपने मना दियां तारां जोड़िए गुरु चरणां नाल।